जो जन लेहे खसम का नाओ, तिनकै सद बलिहारे जाओ। सतगुरु जी कृपा बख्शिश करन, आपां सारिआं ने मिल बैठ संध्या दे दीवाना दी हाजरी भरी। दतार पातशाह जी साढ़े सारिआं दे सिर ते मेहर भरिआ रखण, इस तरह ही अपने दर घर नाल, अपनी बाणी नाल, अपने उपदेश नाल जोड़ के रखण। सतगुरु कृपा बख्शिश करन, रहमत वरताउन। आओ, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी, सारे रल मिल के पावन बाणी आनंद साहिब जी का गायन करिए जी।

ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरे रहाओ सह सब नैन नन नैन है तोहे कौ सह समूर्त नना एक तोहे

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते पारों पकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह दी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ़ है, सिखी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया, मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ये हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठा मीट के नुकरे रहा बैठी, टुट्टी होई रवाब रबाबियां दी, उच्छी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रबाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली।

सिम सुख पावो सिमरो जास बिसंबरे के वेद प्रास सिमर सुत्या कर इनका एक जिस जीव बसावे कांखी एक है दस तुहार सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम प्रभ के सिमरन गर्व नावस है प्रभ के सिमरन काल पर हर है प्रभ सिमरत किस बिघन न लागे प्रभ के सिमरन भौ न व्यापे प्रभ का सिमरन साध के संग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन हो सुपला से सिमरे जनाब सिमराय प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए प्रभ जी बसे साध की रसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरन से बेमोता जे प्रभ को सिमरे से सुखवासी सिमरन ते लागे जिनाप दयाला प्रभ का सिमरन से पर उपकारी प्रभ का सिमरन से मुख सुहावे प्रभ का सिमरन दे आत्म जीता प्रभ का सिमरन दे आनंद कनेरे नंद कृपा दे आन दिन जाल प्रभ के सिमरन कार्य पूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बाणी प्रभ के सिमरन ने चलासन प्रभ के सिमरन अनंत जुनकार सिमर से जिन जिन को प्रमया हर सिमरन का भगत प्रगटाए हर सिमरन पैसे जती दाते हर सिमरन धारी सब धरना हर सिमरन

0: हर का नाम जपत हो सिखिया
1: क्रोरी बनना परे
0: हर का नाम जपन स्तर है
1: माया रंग तिखना बुझावे
0: हर का नाम जपत गावे
1: मार्ग ए जात केला
0: वे हर नाम संगो दुखेला
1: सनमन सदा ते आईए
0: ज्ञान गुरमुख परम गत पाईए
1: कृष्णाय कोल लखवाहे
0: नाम जपत है पार पराई
1: जय आए संगारे
0: हर का नाम जत काल उधारे
1: तुम जन्मे मरि जाम
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: हर
0: का नाम कोट पाप होवे
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
0: नानक पाए साध के संग
1: जे मार के गने जाए न कोसा
0: हर का नाम महासंग तोसा
1: जे पहने अंध गुबारा
0: हर का नाम सांगो जारा
1: तेरा को ना सुवानो
0: हर का नाम ते नाल पहचानो
1: जे महाप्यान तप्त बहु काम
0: ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जे तीर्था मन तुझ अकर खे
0: ते नानक हर हर अमृत वर्ख है
1: जना के वर्त नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर के नाम दास की ओट
0: हर के नाम उधरे जन कोट
1: जस करत संत दिन रात
0: हर हर अवगुण साध कुमात
1: जन के हर नाम निदान
0: पार ब्रह्म जन की नदान
1: अंतर रंग रते रंग एक
0: हर के नाम जन को तृप्त भुगत
1: का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत का परे न भंग
1: नाम जन की वड्याई
0: हर के नाम जन सो बाबाई
1: नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत का सुनाई भोग
1: हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर देवा
1: जन के मालिक जीना
0: हर तन जन को आ प्रभु दीना
1: हर जन के उठ स्थानी
0: हर प्रताप जन हर न जानी
1: जिन हर रस राते
0: सुन माल नाम रस माते
1: जिन हर हर जपे
0: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
1: के भक्त मुक्त बहु करे
0: नानक दासा के ते तरे
1: जते हर को नाम
0: काम देन हर हर गुण गान
1: संते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुरत दर्द दुख लथा
1: की महिमा संत रिद्वसे
0: संत प्रताप दूर सब नसे
1: सब

नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्यास्पद अर्प गौर मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या वास वेद विकारा सफल दे नानक हरा नाम ले साज बिना कह हो सुचा मुखावता के दुर्गंध मेघ बिना जो खेली जाए जो किरपन के निराल धाम नानक ताके बल बल जाओ माने प्रीत मुखो गठलावत बार पेख न काओ पीन आव चाव जन्मे मरे तिसकी सीख दर संसार नानक उचन जन प्राता अपना किया आपे माने किसे दूज नावत किसे बुझात नेरा सब को जाने आत्म की रहत

0: ज्ञानी
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता
1: ब्रह्म ज्ञानी के हो चिंता
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञानी निष्कर प्रभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी का वरदान
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस वट पाग भी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी का

नमस्कार। सबगानी जीव जीवनी माता ब्रह्मज्ञानी पूरन पूरक विधाता ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी आप

नानक हो परस सगल निस्तारे। ऐश्वरी मिथ्या नाही रसना परस, परतै रूप न पेखे नेत्र, कर न सुने काहू की निंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, इंद्री जित पंच तोपते रहत, वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन,

राम नाम सार रस पीवे, हर की कथा हृदय बसावे, वेद पुराण सिमरत पूजे मूल, चौवन्ना को दे उपदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जो जो जपे तिसकी कथ होए, कर कृपा अंतर उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कहो जुगत किते न पाइए तरम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, आत्म राम तिस नद्री आया, सदा निकट निकट हर जान, अपने दास को आप कृपा करें, सगल संग आत्म उदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, तैसा हर तैसा उसोग, तैसा स्वन तैसी उस माटी, तैसा मान तैसा विमान, जो वर्ताए साई जुगत, पार ब्रह्म के सगले नाओ, आपे करण करावन जोग, पसरे आप होए अनंत तरंग, जैसी जैसी मत दे तैसा प्रकाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक परे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनेक प्रकार, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोटपन प्रमेय उदासी, कई कोट तपिसर होते, कई कोट चारे कर्नर करते का अंत न पावे, कई कोट अंत ज्ञानी, कई कोट अभिग आत्म अकोड, कई कोट पर तुगना हर, कई कोट पर देश पर माहे, नाना करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रसपोगी, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट देश पो मंडल, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, नानक जिस जिस पावे तिसे तारे, कई कोट वेद पुराण सिमरत और शास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट पूत प्रेत सुकर मृगाच, नानक आप पत्र रया परपूर, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट पो जो नी फिरे, कई कोट काले थक पाए, कई कोट माया में चिंत, नानक सब कुछ आपके हाथ थे, राम नाम संग तिल तिल लगी, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, नंगते जन सदा तन तन, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई जुगत कीनो विस्तार, सदा सदा एक एक कंकार, आपे आप नानक प्रभ सोए, तिन होवत आत्म प्रकाश, सदा निहारे एको नेत्र, अमर पे सत सद ही जीवे, आत्म रस सुख सहज समावे, जन को सास सास समारे, नानक ओ परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने चल तन सोए, अश्वदी ज्योतिष पावे सोई हो, अंत नहीं किस पार आवारा, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, नानक सब में रिया समाए, पपावे ता पाथर तरावे,

0: पावे ता हर गुण पाखे, आप करे आपन बिचारे, खेले बिकसे अंतर जामी, नानक दृष्टि अवन ना आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, ज्योतिष पावे सोई करे, जय जानत आपन आप बचे, निमक माए चार कुंड फिर आवे, नानक तेजन नाम मिले, पार ब्रह्म गरीब निवास, तिस तत्काल दै तिस प्रगटावे, ताका लेखा न करे जगदीश, कट कट पूरन ब्रह्म प्रकाश, नानक जीवे देख बढ़ाए, करण करावन सबको नाथ, ज्योतिष पावे सोई फुंथियो, कबू सोग हर रंग हसे, कबू ऊप कास प्याल, नानक आप मिला वनहार, कबू सोए रहे दिन रात, कबू सरब की होत रवाल, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू पला पला कहावे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू मोन तारी लिवान, कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, अनेक जोन परमे परमिया, जो प्रपावे तिवे नचावे, नानक दूजा अवर न कोए, उस स्थान ते बहुत न आवे, उस स्थान का नहीं विनाश, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, तू ज्योति संग ज्योत समाना, बिसराम नानक पप के सदगुरबान, सुखी बसे मसकीनिया, आप निवार तवे, हेलो हेलो, हाँ हाँ आज
1: सब कुछ उसका करने हार

0: आदले वत्याले
1: सच सच सरसकीना
0: कोट मजे किने विलेचीना
1: परा परा तेरा रूप
0: असुंदर पार अनूप
1: निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: कट कट सुनी सुरन विख्या।

0: राष्ट्रपति संत के दुखन आर जा कटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत कृपाल कृपा जे करे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संतन के दुखन तृष्णा मह जले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत दुखी का थाव को नाहे, संत का निंदक महाअत्ताई, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदा दोख मह दोख, संत का दुखी सदा अपवित्र, संत के दुखी को डान लागे, संत का दुखी महाअंकारी, संत का दुखी जन मै मरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये, संत का दुखी अंतर ते थोता, संत के दुखी की जड़ किचना है, संत के दुखी को अवर न राखन हार, संत का दुखी ओम बिल्लाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, संत का दुखी छुटे इकेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, कीर्त निंदक का तुर ही पया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत के दुख न तिष्ठे कोए, पाया कीर्तन मेटे कोए, सब कट तिसके होकर नहार, प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, सब कुछ वर्त तिसका किया, अपना खेल आप करने हार, जिसनू कृपा करे तिसे आपन नाम दे, वड़पागी नानक जन से सलो, तजो से आनक सुर जनो सुमरो हर हर राय, एक आसमान
1: राष्ट्रपति मानव की टेक वृत्ति सब जान, जिसके दिए राय गाए मारे रखाए को आप, जिसका हुकुम भू सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मन में कर निरंकार, निर्मल रसना अमृत पियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, चरण चलो मारो गोविंद, पर हर करुण शरण हर कथा, बड़भागी ते जन जग माहे, राम नाम जो करे विचार, मन तन मुख बोला हर मुखी, एको एक एक बचाना है, नाम संग जिसका मन मान्या, गुर प्रसाद अपन आप सुजय, सा संग हर हर जस कहत, अंदन कीर्तन केवल बखियान, एक ऊपर जिस जन की आशा, पार ब्रह्म की जिस मन पूख, जिसको हर प्रभ मन चितावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दिष्टाया, सुदत सुदत सुदत सीजिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, न कि जन्मे न किच मरे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आपे आप सकल मैं आप, अवनाशी नाई कुछ खंड, अलक पे पुरक प्रताप, जिन प्रभ जाता सुशोभावंत, प्रभु के सेवक सकल उदाहरण, आपे मेल लय कृपाल, उनकी सेवा सोई लागे, नाम जपत पावे विश्राम, जो किस करो सो प्रभु के रंग, सह सुभाय हुए सो हुए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जिस दे उपजे तिस माए समाए, आपस को आपनी नो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सलोक सर्व कला पर।

मन की तो प्रीत्याग श्रवणांतरे को सोए गैर गंभीर गई सुजाना कृपा नदान दयाल भुगसंद नानक कै मने ओ नराओ जो कर पाया सोई योग तिसका मंत्र जाने और स्रव तो स्नेह करता कै तप मैं तभी स्वर्गस्त मैं भोगी नानक तिस प्रोका के नंत ना पाया सगल देव हारे उगाए सगल परोही अपना सूत जनदास नाम त्या वैसे जन्म मेरा फिरा वै जाए जैसा जनावे।

एक सिमर नाम आधार चन कमृत मय उतारो धुड़कर गौ नाम अरवत संत जना का निर्मल मंत सूतन जीव ते पावे सुसुख साधु संग प्रीत सासु बाबजर की सनी रोग मिटा रव कतलाए जप नानक दरग परवान दैदिस्ताव ताव ठाए जाकर दबस रसोए सिमर सिमर सदा सुख पाओ भगत पाए आत्म प्रकाश कौ नानक काटी जम्बासी जन्म रह सुखा चौकाचा आप त्याग सन गुरुदेव हर हर सिमर प्राण आधार सिमर शास्त्र वेद विचारे मनवंचत नानक पल पाए तू क्या लपटा है मूर्ख मना इनते कहो तुम कौन सनाता इनते कहो कौन छुटकार झूठा डम झूठ पाजारी नाम विसार नानक पछताना भगत बिना बोडो बेजाने निर्मल हुए तुम्हारो चीत जन्म जन्म के गिल बिक जाए सुनत कह त्रैत गत पावो सहज भाय नानक गुण गावो बिंस जायो मैं बिक बैल सास करासर नाम समाल सास संग पावे सचना किया सुख दरगह जयकार कौ नानक जाके मस्तक लेख एक सिमरे को मनाए मन तन जाप एक भगवंत पूरन पूर रहो प्रप्याप एक रात पर

कृपा देव और नाम पार ब्रह्म श्रद्धा पूर्व सास आज प्रत में त्याओ अद करो प्रभु की नित नित नानक मांगे नाम प्रभु सार रस पावे बिरला कोई पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने उपजय चाओ साध कह संग अंतर प्रकाश अंधिन लेव लाग नानक नाम रते सुखोए सतगुर ते निर्मल मत लई सेव की नौ सदा निहाल जन्म मरण दुख ब्रह्म गया रवरिया सत्संग जूरी नानक भक्ति नाम समाये सुख सहज किया जाने सुख सहज जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिरला लाख है जन्म जन्म का टूटा काटा है प्रभु अपना नंग नंग चिंताया आंत्या जपो हर नाम आव जपो और नाम जपाओ बिन भक्ति तनो सिचार बूढ़ो जात पाए विश्राम नानक नाम जपो कुंतास मन तन अंतर ही सुहाओ मन भिक्षे सात चरण तोये बिरला को पावे संग गुरुप्रसाद नाम जप लया नानक रया सर्व समाये भक्तो चल सदा कृपाल सर्व कटा कर्त पितपाल आद पुरख कारण करता भगत जना के प्राण आधार भगत पाए लाए मन हित नानक तुम ऋषण पुरुख भगवान एक नम करके गुण गाए हर के नाम की कथा मन पाई रसना जपती हर हर नीत हृदय सब कूर पूर्ण।

तबा पुन तब कहते उता तब बैब्रो के संक मात तब हर शोको के सव्यापत तब मोका के सुबोध परम नानक करने आर न दूजा तब बंद मुक्त को किस को गनी तब नरक सोर को कौन अवतार जब तो सुखित को किटाए तब कौन ने डर कौन को डराए नानक ठाकुर गम अपार तब जनमन को का विनाशन तब जम की त्रास को किस होए तब चित्र किस पूछत लेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक का अपन रूप आपी ऊपर जा तैभी मेल कहो क्या तोता तै कौन को मान कौन अपमान तै चल चल कर लोत को किस तै किसे भू कौन तृप्तावे नानक करते का नाई समार तब कौन माय बाप मित्र सुत पाई तै वेद कते का कोची न तो सगन अब सगन का विचार है तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा नानक अपने का जानो आप वह कैसे व्यापत माया ते गुण का नाई प्रवेश तै कौन चिंत किस लागे चिंता तै कौन कदै कौन सुन नारा नानक आपस को आप बूचा ते गुण में किनो विस्तार को नर को सुर कुंचावत हमें मोह परम पैपार अनेक प्रकार की विख्यान खेल संकुच तो नानक कह जय बसर पासा संत प्रताप उनकी शोभा बनी आप रस भोजन निर्जा।

सच व्यापार करो व्यापारी, इकाटे करको मनमाए, किसते दूर का को जाए, निर्भय जपै सकल पौ मिटै, जिस पर राख तिस नाही दुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, सिर ऊपर टाटा गुरसूरा, मत पूरी अमर जाके दृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, तन सेवा सेवक भगवान, जिस मन बसै सोत निहाल, अमर पए अमर

और ब्रह्म निकट कर फेंक मन अंतर की उतरा चिंद संत जना की तूर मन मांग सासंग गन सागर तरो नानक गुरपुरे नमस्कार सासंग पज परमानंद गुण गोविंद अमृत स्पीवो एक रूप जाके रंग अनेक दुख पंच

सुन नृत्य प्रभु का जी नानक उदरे तिन के साथे कर कृपा प्रभु आप मिलाए अमृत नाम सा संग लेना पूर्ण हो सेव की सेव राम नाम सुन रस न कहते नानक ने भी के बीमारी साधु आनक अगर जीत जिस मन बसे सोत निदान प्रदान पुरख प्रकट सब लोए और नावे आवन जान नानक से प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध ज्ञान से उत्तम स्नान लोग कैसा मुक्त सकलते उदास

0: जियो।
1: नाम त्यावै देवते तीस हर सिद्ध साध हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे जय नाम समाद्यो हरक सोग।

नाम नावण नाम रस खाण अर्पोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवयो जिस पसाय गत अगम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चरे गुर परस्यो अमर प्रगास कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चरे गुर परस्यो अमर प्रगास।

0: परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो।
1: चरण ता परस के हाथ चरण गुरु अमर पवल रे, हाथ ता परस के हाथ।

श्रवण ता पारस ज्ञात श्रवण गुरमर सुनी जै सक्यात सो हुए जित ही में बसै।

0: suppression des
1: तै पढ़ियो एक मन तरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दोय ठाए ना जाण्यो सुपन एक पर तख एक इकस मैं लीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना कीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुर अमरदास जालप पणे तू इक लोड़ै इक मन्यो इको जे लाख

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हो आशिवत कसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद

0: ज्ञान गया जप जाए धर्म आखो कर्म
1: किते पुन पानी बसंतर किते कामेश
0: किते भरमे कार्त घड़िया रूप रंग के वेश
1: कर्म भूमि मेर किते किते तूप देश
0: किते इंद चांद सूर किते किते मंडल देश
1: किते
0: किते देवता नमन किते किते रतन समुंदर
1: कितियां खानी कितियां बानी किते पात नरेंद्र
0: कितियां सुरती सेवा किते नानक अंत न अंत
1: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद कौर नंद
0: धर्म खंड की बाणी रूप तथा काट घड़िया बहुत अनूप
1: कतियां गला कतियां न जाए जे को कह पिछे पिछताए
0: तथा घड़िया सुरत मात मन बोध तथा

0: अनाध है, अजय है, अजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, भूत है, अवर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अमीकर वीक है, तंद है, अबंध है,
0: अभूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है,
1: अनंत है, महंत है,
0: अलीक है, निर्सरीक है, निर्लंब है, असंभ है,
1: अगम है।

परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरं परम विद्धे नमो सस्तर्पाने नमो अस्तर्माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता नमो जो जोगेश्वरं परम युक्ते नमो प्रियत प्रियते विश्वकर्मे नमो शाशां नमो भूभूपे नमो रोगे नमस्तंजनाने नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं अनुपे रूपे समस्त निवासी अदोर्दर्दं गंगु कर्ता सदा

0: सकरी मैं के कर्म करी मैं
1: सर्वत्र
0: माने के सर्वत्र दाने
1: के सर्वत्र कोने के सर्वत्र पोने
0: सर्वत्र देशा के सर्वत्र बेसा
1: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीना
1: सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: सर्वत्र देशा के सर्वत्र बेसा
1: सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा
1: सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
0: सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
1: सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान
1: सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे
0: सर्वत्र पान।

0: गदे सुसर्वानुरागे
1: भुवस्वरूपचिज्ञाचूत
0: निरङ्कल्पनाशे पृथ्वीपरवासे
1: निरुक्तभवान् सदैव सदा
0: भुवत्स्वरूपे प्रजुगत अनुपे
1: निरुक्त सदा विभुगत परवाय
0: अनुगत स्वरूपे प्रजुगत अनुपे।

0: खंड से कल खंड से
1: पलते पले करुणा कर है
0: जपा जपै तपा तपै
1: अमृता
0: अमृत करुणा कृत
1: अमृत।

0: संतान संशांत रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने।

0: परमल प्रणासी सुधर्मन में भूते
1: सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी
0: मुल्क निंदा समस्त निवासी
1: जायब विभूते गजायब गनी में
0: हरियन करियन करी मुल रही में
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भूते स्वयं भाव सम

0: निराकार सब सवारणा
1: सपना गला समरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
0: कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
1: साचे साहिबा क्या नाही करते रे
0: करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे
1: सदा सिर्फ सला तेरी नाम मन वसावे
0: नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे
1: कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे
0: साचा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवा
0: कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
1: सदा कुर्बान किता गुरु बैठो जिस दिया ए वड़ियाईया
0: कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
0: पंच दूत तत बस किते काल कंट कमारिया
1: तुर करम पाया तू जिन को से नाम हर के लागे
0: कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे
1: साची लिवे बिन दे निमानी लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
0: तुद पा समरत कोए नाही कृपा कर बनवारिया
1: इस नाव होर थाओ नाही शब्द लाख सवारिया
0: कह नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
1: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया
0: जाने आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सचे सवार

0: क्या करे बेचारिया,
1: एक भरम भूले फिरे तह जैसे एक नाम लाग सवारिया,
0: गुरु प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाना पावे,
1: कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे,
0: आवो संत प्यारियो अकत की करे कहानी,
1: करे कहानी अगत केरी केत द्वारे पाईए,
0: तन मन तन सब सोब गुरु को हुक्म मनिए पाईए,
1: हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची वाणी,
0: कह नानक सुनो संतो कतियो अकत कहानी,
1: ए मन चांचला चतुराई किने ना पाया,
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया,
1: ए माया मोहनी जनेत परम पुलाया,
0: माया ता मुनि तिने किती जिंट गोली पाया,
1: कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया,
0: कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया,
1: ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले,
2: साथ तेरे चले नाही जिस नाल की उचित लाईया,
1: ऐसा कम मूले ना कीचा जित अंत पछोताईया,
2: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
1: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है, आखे ता वेख सब तू है जिन जगत उपाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया,
2: अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया,
1: जी जंत सब तो दो पाए एक बेख परसन आया,
2: लाभ लोग अंकार चुका सतगुरु भला पाया,
1: कह नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया,
2: भक्ता की चाल दयाली चला निराली भक्ता के
1: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया हर वासना समानी, ज्यो तू चलाहे ते चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरा,
2: तू चलाहे ते चले जिन्ना मार्ग पावे,
1: कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा ते आवे,
2: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे,
1: कह नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे ते वह चलावे, एहो दिन कह मन वसया जिन तुरो लिखया आया, कह नानक सब सोहेला सतगुरु सुनाया, हर ते आया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, करमी सहज न उपजे विण सहजे सहसा न जाए, सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे एह सहसा इव जाए, एह तृष्णा बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया, कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया, कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी।

0: नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले।
1: जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे,
0: होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले।
1: के चर हृदय त्याए अंतरात में संभाल,
0: आप छड़ सदा रहे परने गुरु बिन अवर न जाने कोई।
1: संतो सो सिख सन्मुख होए,
0: जे को गुरते बेवक होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे।
1: आवे मुक्त ना होर ते कोई पुशब वे किया जाए,
0: अनेक जूनी भर में आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए।
1: मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए,
0: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु।

जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नाम साया। कह नानक एह शरीर प्रमाण हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया।

0: गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सता ज्ञान भंजन गुरुदेव वदित सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मन निरोधरा
1: गुरुदेव सात सब बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंजन परम्परा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र जपुदरा
1: गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा मूल पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक
2: देव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा।

0: जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर तेरा घर भला
1: तेरा घर आनंद बधाई तुद घर
0: माण माता तेज अपना आप जर
1: सर्व कला भरपूर दिस जग कथा
0: मारक दासन दास

0: बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। जो गज के बुलावा सो निहार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
1: पै अरदास जियो पिंड साहब तेरी रास।